0: ये तुलो दिन साव रिशा आया ना कोई ना तो अम्मा टेन टुले स्टुले
1: जी चुंडूर जिले आप ऐसा शन जी अम्मला ता बाला कुनान जो सुबे यंगो शान्ये की फॉलिया मेंग कुन्जे ता रिबलिया मज़िम बा जी मिठान वेब ता दिन्जे लिया आ चम्मच ता दिन्बे सिम्सन जिंगी दिन्जे की फ्यूमी जिले सोनियों आ दी मासे बे जी बाला के चुंडूर के लिया मिठान जोबे सुन्दर ता जी नेवन जो दुरुप चेचे रिबल मेवा मेंज
2: Nga linga tuya kawiyo bala, nga linga tuya kawiyo bala.